गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सभी का स्वागत है मानो सोने एफएम रेनबो दिल से दिल तक पर। दोस्तों, सुबह के 10:04 हो चुके हैं और आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। और मैं आपका दोस्त आरजे अंकित आ चुका हूं आपके अपने चैनल के अपने शो पर, यानी नॉन स्टॉप गपशप। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का नाम इसलिए क्योंकि मैं और आप करते हैं ढेर सारी बातें, और बातें करने के लिए दोस्तों आपको बस करना पड़ता है फोन नंबर डायल। हमारा फोन नंबर है 2213-1341। जी हाँ दोस्तों, नंबर तो आपने नोट कर लिया होगा। और दोस्तों, आज जैसा कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे है, जी हाँ, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, और अगर उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताऊं तो वो होगा विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। तो दोस्तों, आज मैं करूंगा इसी बारे में बातें, दूंगा छोटी मोटी जानकारी आप लोगों को, लेकिन आपसे भी मैं कुछ जानना चाहूंगा। देखिए, हम तो हमेशा घर में फर्स्ट एड रखते ही हैं, चाहे जैसे भी दवाइयां हो, जैसे भी फर्स्ट एड किट्स हो हमारे घर में, वो कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। लेकिन सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं, जी हाँ, इंजॉय करने गए, सेलिब्रेट करने गए, तब हम क्या कुछ ना कुछ फर्स्ट एड किट रखते हैं, कुछ दवाइयां रखते हैं, कुछ मेडिसिन रखते हैं अपने लिए, तो क्या होती है? आइए, अगर आपके पास जो भी है आप आंसर्स हमसे दीजिए, आपके मन में जो भी राय है हमसे शेयर करिए। और नंबर मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ, वो है 2213-1341। आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ मैं आज कि जब हम घूमने जाते हैं तो वो फर्स्ट एड कौन कौन सी किट, कौन कौन से सामान हम अपने साथ बैग में रखते हैं, जो हम अपने साथ उसे लेकर जाते हैं। और देखते हैं कौन आएंगे हमारे फोन लाइन में। लेकिन फोन लाइन पे आने से पहले तब तक सुन लेते हैं पहला ट्रैक और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम इस गाने के साथ।

फिल्म आवारा पन टू से दोस्तों साज भट्ट सुबोध शर्मा की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक मिठुन का संगीत शहीद कादिर के बोल और हमारे साथ एक दोस्त जुड़ चुकी है लाइन पे करते हैं उनसे बात। हेलो हेलो हेलो शायद कुछ फॉल्ट हो गया होगा लेकिन एनीवेज मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा था वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के बारे में। फर्स्ट एड का मतलब हमेशा डॉक्टर बनना नहीं है। फर्स्ट एड का सबसे बड़ा मकसद होता है मदद पहुंचने तक व्यक्ति को सुरक्षित रखना और हालत को बिगड़ने से रोकना। यानी आप डॉक्टर नहीं है फिर भी आपकी छोटी सी सही मदद बहुत बड़ी हो सकती है।

फिल्म लव ब्रेकअप और जिंदगी से सुन रहे थे आप सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सलीम मर्चेंट और श्रद्धा पंडित की आवाज में। ट्रैक सलीम सुलेमान का संगीत और जावेद अख्तर के थे बोल। और हमारे साथ एक फ्रेंड आ चुके लाइन पे, कर दूं उनसे बात। हेलो हेलो दोस्तों, CPR सिर्फ फिल्मों वाली चीज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बेहोश है और सामान्य रूप से सांस नहीं ले रहा है तो तुरंत इमरजेंसी हेल्प बुलाना और CPR शुरू करना जीवन बचाने से महत्वपूर्ण हो सकता है। हीरो बनने के लिए कैप नहीं चाहिए, कभी कभी सही वक्त पर की गई मदद ही आपको हीरो एंट्री होती है।

0: फिल्म देसी बॉय से दोस्तों आप सुन रहे थे मीका सिंह और शेफाली एल्वरिस की आवाज में, ट्रैक प्रीतम का, संगीत कुमार के बोल। और दोस्तों जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है, मैं आज बात करूं दोस्तों वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के बारे में। हम सभी जानते हैं वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, फर्स्ट एड में क्या क्या किट्स होते हैं, क्या क्या सामान होते हैं, और वो हमेशा दोस्तों हमारे घर में कहीं ना कहीं तो होते हैं, लेकिन जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड किट है जो हम अपने साथ लेकर जाते हैं, यही मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं। और हमारा फोन नंबर है 2221341, और हमारे साथ एक दोस्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: नमस्कार दादा।
0: नमस्ते, कौन है तुम्हारे साथ फोन लाइन पे?
1: मैं शोभी शकर बोल रहा हूँ कस्बा से।
0: शौविक वेलकम टू माय शो। बताओ क्या क्या सामान तुम रख के ले जाते हो? कपड़े जूते तो रखती हो, लेकिन फर्स्ट एड किट में क्या रख के ले जाते हो?
1: पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छा सा एक टॉपिक दिया है,
0: थैंक यू सो मच।
1: आपके साथ बहुत दिन के बाद बात कर रहा
0: हूं। बहुत दिन हो गए
1: एकदम दादा, आप जब भी आते हैं एक बोलते गले हम लोग जो वास्तव टॉपिक जो बोलता है ना आप लेता है। फिर से मैं टॉपिक में आ रहा हूँ। देखिए हम लोग जब बाहर जाते हैं हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स जो छोटा सा जो होता है हम लोग बैंडेज तो लेता है, टेन बैंडेज भी लेता है और भी कुछ मेडिसिन। जब हम लोग जो पहाड़ में जाते हैं हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे हम जा रहे हैं, वो हम लोग जो पहाड़ में जा रहे हैं तो वो वोमिटिंग का वो मेडिसिन जो होता है वो, जब भी हम लोग का काटा छुरा जब हो जाता है तो जो औषध होता है वो हम लोग ऐसी तरह से लेता है। और जब भी कोई हम लोग का जो है फूड पॉइजन जब हो जाता है क्योंकि बाहर में जाकर तो हम लोग विशेषकर हम लोग बंगाली लोग जो इच्छा है भाजा भुजी हम लोग खा लेता है ऐसी तरह से तो होता ही है। जब भी हम लोग, मैं बोलता हूँ समुद्र में जाता है तो वहाँ पर जो सी फूड जो है हम लोग खाते हैं, उसके बाद हम लोग को फूड पॉइजन हो जाता है। इसलिए हम लोग को छोटा सा जो मेडिसिन होता है जो टेबलेट जो था वो हम लोग को लेना पड़ता है। और हम लोग जब पहाड़ पहाड़ में जाते हैं तो देखता हूँ जो पहाड़ से ज्यादा समुद्र में हजम शक्ति जो होता है ऐसी कोई मेडिसिन हम लेता है। सबसे बड़ा जो होता है हम लोग जो पानी में अब कभी कभी बैक्टीरिया भी होता है, इसीलिए वो लिक्विड जो होता है ना वहाँ पर दो फोटा देखकर एक अच्छा सा कोई ऐसा सा कोई अच्छा पानी हो जाता है तो उससे कोई मेडिसिन लेता है। मिनिमम चार पांच हम लोग का मेडिसिन हम लोग लेता ही है, विशेषकर बैंडेज टेप बैंडेज बोलिए, हाथ छोड़ गया था हाथ कट गया था उसे तो मलम बोलिए लिक्विड कोई भी बोलिए ऐसे लेता है। ऐसे से कोई मुझको लगा सबको ये लेना चाहिए क्योंकि हम लोग जब भी कोई घूमने जाता है तो विशेषकर पहाड़ में जाए तो वोमिटिंग का जो होता है ना उसे मेडिसिन बोलिए बैंडेज बोलिए लेना चाहिए, हम लोग लेता है ज्यादा, यही मैं बोलूंगा।
0: थैंक यू शोभिक, अच्छी जानकारी दी तुमने, और जिन्होंने जो भी हमारे आज कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको भी जानकारी मिली होगी। और आपके पास भी कोई जानकारी कि क्या क्या आप लेके जाते हो तो आप भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों खुद निकलने पर पहला काम क्या है? बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो तो साफ कपड़े या ड्रेसिंग से सीधा और लगातार प्रेशर देना महत्वपूर्ण फर्स्ट एड कदम है। बार बार कपड़ा हटाकर देखना कि खून रुका या नहीं, इससे बचना चाहिए।

0: फिल्म लेडीज वर्सेस रिक्की बहल से सलीम मर्चेंट श्रद्धा पंडित की आवाज में आप सुन रहे थे ये ट्रैक सलीम सुलेमान का था कंपोजिशन। और हमारे साथ एक दोस्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो सुप्रभात।
0: सुप्रभात, कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: बिलगरिया से शुभदीप।
0: शुभदीप वेलकम टू माय शो, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो आज के इस विषय में?
1: क्योंकि आज प्राथमिक उपचार दिवस है तो हमको लगता है, जैसे मैंने स्कूल में क्या होता था कि एक मैंडेटरी प्रोजेक्ट वर्क था हर साल कि फर्स्ट एड किट बनाना है।
0: बिल्कुल।
1: और बहुत समझदारी और सूझबूझ से बनाना है क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट एड जो है वो एक ज्ञान का भंडार है और सही उपचार कौन से चीजों में क्या लगनी चाहिए वो उसकी सूझबूझ होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एड तभी काम आता है जब आपातकालीन सिचुएशन हो। तो जब भी हम लोग कहीं हॉलीडे में जाते हैं तो पहली बात तो ये है, जो मैंडेटरी रहता है वो अगर दवाई को छोड़ के जो रेगुलर मेडिसिन लेते हैं उसके अलावा जो हम लोग बचपन से सीखते आए कि बैंडेजेस हो गई, गॉज हो, एक थर्मोमीटर हो और एंटीसेप्टिक लोशन हो वगैरह, और कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि बेसिक जो मेडिसिन होते हैं जैसे कि पैरासिटामोल हुआ, जो क्योंकि जब हम लोग जैसे कि जब सीपीआर की वक्त होते हैं तो सीपीआर तो सब दे नहीं सकते
0: नहीं।
1: तो उसके लिए भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो हमको लगता है जब हम लोग फर्स्ट एड किट लेते भी हैं तो हम लोग को ये ज्ञान होनी चाहिए कि फर्स्ट एड किस तरह से उसको अप्लाई करना है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो अस्पताल हमेशा नजदीक होता नहीं है,
0: नहीं होता,
1: और डॉक्टर

0: सर कभी उसको पेशेंट को देखने से पहले जो पहली चीज होती है कि हम लोग सबसे जल्दी उसको फर्स्ट एड दे, क्योंकि ऐसा बहुत सारे सिचुएशंस हम देख चुके हैं कहीं भी कि फर्स्ट एड हम लोग को हेल्प किया है और बाद में डॉक्टर खुद बोले हैं कि ये फर्स्ट एड हुआ था बोल के ही पेशेंट बच गया।
1: सही बात।
0: और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम लोग बाहर जाए जहां भी जा रहे हैं उसके आसपास के मेडिसिन स्टोर्स अवेलेबिलिटी, अस्पताल के नंबर्स या डॉक्टर के अगर नंबर्स हो वो हमेशा उसी किट में रहना चाहिए जो मेडिकल इंफॉर्मेशन है।
1: बहुत सही जानकारी।
0: हाँ क्योंकि हमेशा होता नहीं कि अब अभी अगर किट में ही हो इन्फॉर्मेशन जैसे बुकलेट की तरह हो एक छोटा सा डायरी हो तो ऐसा नहीं कि सब लोग मोबाइल से ढूंढने लगे कि पता नहीं कहाँ डॉक्टर है क्या क्या नंबर है किसका। और जब हम लोग ऐसा कोई जगह में जाते हैं जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत है और जैसे कि स्केयरसिटी ऑफ वाटर जो होते हैं तो उसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है डिहाइड्रेशन का।
1: बिल्कुल।
0: तो उसमें ओआरएस का सैशे होना ही चाहिए।
1: सही बात है।
0: और एक चीज बताना चाहूंगा, ये एक होता है ट्वीजर्स जो इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल्स में। तो ट्वीजर्स, ग्लव्स और जब भी कहीं चोट लगे जैसे पैरों में कहीं हिली रीजन में ट्रेक करने के टाइम में तो उसमें कोल्ड पैक वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग को चोट मिलता है तो पहला जो दिन होता है वो कोल्ड पैक का, लेकिन दूसरा जब दिन होता है वो हो जाता है हॉट पैक। तो हॉट पैक तो आप बाद में भी ले सकते हो जब आप होटल पहुंच जाओ, लेकिन कोल्ड पैक अगर हमारे पास रहता है तो उसको पहला लगाना चाहिए, तभी जाके सूजन कम होगा।
1: वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू मेरे साथ फोन लाइन में आने के लिए, जुड़ने के लिए। और सिर्फ मुझे ही नहीं, जितने भी आज श्रोता सुन रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं जानकारी तो मिल ही रही होगी। और दोस्तों, जलने पर कॉमन गलती हम क्या करते हैं? जलने पर टूथपेस्ट, बटर या कोई घरेलू लेप लगाने की बजाय बहुत बहते हुए ठंडे सामान्य नल के पानी के नीचे बर्न को ठंडा करना बेहतर फर्स्ट एड है। टूथपेस्ट दांतों के लिए है, बर्न के लिए नहीं होता।
2: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

0: फिल्म गोलमाल 3 से दोस्तों नीरज श्रीधर अंतरा मित्रा की आवाज में आप सुन रहे थे ये ट्रैक प्रीतम का कंपोजिशन कुमार के बोल। और दोस्तों 10:40 AM हो चुका है और आज नॉनस्टॉप गपशप में दोस्तों मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि आज है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, और मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि जब हम घूमने जाते हैं हम तो कपड़े जूते ये सब भर भर के रखते हैं, लेकिन क्या हम फर्स्ट एड किट रखते हैं? और अगर रखते हैं तो ऐसी कौन कौन सी मैंडेटरी चीज़ है जो हम अपने बैग में इंक्लूड करते हैं, वही मैं आप लोगों से आज जानना चाह रहा हूँ। और हमारा फ़ोन नंबर है 2213-1341। अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, और हमारे साथ एक दोस्त जुड़ चुके हैं, आइए उनसे करते हैं बात। हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते, कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: हाँ
0: पायल बोलो, की बोलबे आज के টপিকে?
1: হ্যাঁ হ্যাঁ তো দাদা আমার মনে হয় দেখো ফার্স্ট এইড আমাদের মেন যেটা দরকার অন্তত একটা অয়েন্টমেন্ট আমাদের সামনে রাখা খুব জরুরি, যেটা মলম যেটা আমাদের সামনে থাকাটা খুব জরুরি, আর সেই সঙ্গে একটা ব্যান্ডেজ।
0: হ্যাঁ
1: তো এই দুটো জিনিস যদি থাকে তো বাই চান্স ধরো কোথাও একটু কেটে চড়ে গেল, ওই দুটোই মনে হয় আমার মেন সবার আগে লাগে ফার্স্ট এইডে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, ওটা খুব তাড়াতাড়ি ট্রিটমেন্টের কাজে বা একটুখানি মলম লাগিয়ে একটু ব্যান্ডেজ করে দিলাম, তো সেক্ষেত্রে অনেকটা কাজে লাগে। আর সেই সঙ্গে আমার মনে হয় দাদা শুধু নিজেদের ক্ষেত্রেও নয়, আমরা যদি গ্রামে বাসে বা রাস্তায় যেখানেই যাই কোনো অচেনা মানুষকে যারা তাদের আমরা কোনোদিন দেখিনি বা চিনি না, তাদেরও যদি এরকম কোনো বিপদ হয় আমার মনে হয় তাদেরকেও এইভাবে মলম বা একটা ব্যান্ডেজ দিয়ে আমরা যদি অচেনা হলেও তাদেরকে একটু হেল্প করতে পারি, তো মনে হয় এটাই আমাদের কাছে অনেক।
0: একদম ঠিক বলেছো পায়েল, থ্যাংক ইউ অনেক লি পায়েল আমার সাথে ফোন লাইন পে জুড়নে কে আর বাতানে কে আপনি রায়। और फ्रैक्चर में सीधा करने की कोशिश ना करें, अगर किसी का हाथ पैर अजीब एंगल पर दिखाई दे रहा है तो उसे अपनी तरफ से सीधा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उसे जितना संभव हो स्थिर रखें और मेडिकल हेल्प लें।

0: फिल्म राजनीति से दोस्तों मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाज में रोमांटिक ट्रैक आप सुन रहे थे। कंपोजिशन प्रीतम की, लिरिसिस्ट इरशाद कामिल, और हमारे साथ एक दोस्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्ते, कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: मैं निर्मल सराफ बोल रहा हूँ बागवाटी से।
0: निर्मल जी, वेलकम टू माय शो, बताइए आप आज क्या कहना चाहेंगे?
1: मैंने बात ऐसा कि आदमी कहीं भी जाएगा बाहर तो फर्स्ट एड का जो सामान है वो तो लेगा ही लेगा, और कुछ भूल जाए
0: बिल्कुल,
1: पर वो लेना जरूरी है। क्यों, हम जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो उस जगह बाहर वो कंपनी की दवाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई गारंटी नहीं
0: है। बात तो सही है।
1: हाँ, तो वो लेना है। अभी मैं एक बात बताऊं कि मेरी एक रिलेटिव रहती हैं बंगलोर में, 4 महीना पहले वो स्कूटी से उनका एक्सीडेंट हो गया ऑफिस आते हुए।
0: अच्छा।
1: बगल से गाड़ी जा रही थी, उसने उनको स्कूटी को साइड किया, सामान सारा अपना लैपटॉप में रख

0: लैपटॉप और उसका जो मोबाइल अपने गाड़ी में रखा, तुरंत उसे बगल के उसने भर्ती किया और फिर घर वालों को फोन किया।
1: अच्छा,
0: तो ये जो उन्होंने किया ना, ये सबको करना चाहिए।
1: फर्स्ट जो
0: ट्रीटमेंट मिलता है ना इतनी जल्दी, उसका कोई मुकाबला नहीं होता।
1: बिल्कुल, हमें एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए।
0: हाँ, फर्स्ट जो होता है वो उसकी कोई कीमत नहीं होती।
1: थैंक यू आने के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ।
0: और एक बोलना चाहे तो मैं एक बात बताना बोलना
1: जी जी जी जी बोलिए।
0: मजाक की बात थोड़ी सी, जैसे अपने हावड़ा से निकलते हैं तो लिलुआ, बेलूर, बाली, उत्तर पाड़ा, हिंदमठ से आते हैं, तो हमने कल्पना करिए कि हावड़ा से निकले लिलुआ एक इंसान है।
1: अच्छा,
0: वो बगल में उसके बाद बेलूर है, तो लिलुआ बोल रहा अपने दोस्त बेलूर को, लिलुआ कहता सुन बेलूर, आगे बाली, उत्तर पड़ो, उत्तर पाड़ा, उत्तर पड़ो, कल एम्बेसडर कारखाना था ना, पकड़ो हिंद मोटर। अब हिंद मोटर पकड़े क्या करना है, आगे जाना है, पूछो आगे कौन सा नगर, कौन नगर, आगे है रिछड़ा, रिछड़ा, श्रीरामपुर, सेवड़ा, फुल्ली, अलादादा।
1: वाह, थैंक यू ऐसे बताने के लिए। ऐसी मजेदार किस्से भी दोस्तों बताते रहिए, आप आते रहिए हमारे साथ फोन लाइन पे और जुड़ते रहिए। और बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाना जी एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई बेहोश है उसके मुंह में पानी, खाना या दवा डालना खतरनाक हो सकता है। बेहोश में पानी पिलाना मदद नहीं, मुसीबत को इन्विटेशन हो सकता है।

मैं बताता हूँ अभी क्या होगा। अभी हम बढ़ेंगे हमारे कार्यक्रम के आखिरी ट्रैक की तरफ, और अभी आप सुन रहे थे फिल्म हाउसफुल से मिका सिंह, सुनिधि चौहान, साजिद खान की आवाज में, ट्रैक शंकर, एहसान लॉय का कंपोजिशन, लिरिसिस्ट थे समीर। और दोस्तों इसी के साथ हमारा कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप होता है यहीं समाप्त। मुझे यानी आपके दोस्त अर्जय अंकित को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अ वेरी हैप्पी वीकेंड, इंजॉय करिए, सुनते रहिए हमारा अपना चैनल FM रेनबो, और मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द FM रेनबो पे। और अगर आप मुझसे आज के दिन फिर से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं FM गोल्ड पर ठीक 11:10 पर।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी कोलकाता 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक। दोस्तों, मैं हूं आज की दोपहर आपके संग आपकी आरजे भारती लेकर कार्यक्रम तीन का तड़का। लेकिन उससे पहले आज की परियोजना प्रस्तुति।
2: 107 एफएम रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
1: दोस्तों, आज परियोजना प्रस्तुति में हम बात करेंगे सरकार से ली गई विशेष उद्योग, जिस योजना की बात करेंगे वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की। मुफ्त बिजली योजना में भारत सरकार ने देश में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना का उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को अपने घर की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए सरकारी सहायता दी जाती है। इससे परिवार अपने घर की बिजली की आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा और ऊर्जा से पूरा कर सकते हैं और बिजली के बिल में भी कमी ला सकते हैं। अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजने की सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है। यह योजना पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ और एक नई ऊर्जा स्रोत है, इसलिए इसके उपयोग से प्रदूषण और पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, पीएम सूर्य घर योजना केवल बिजली के खर्च को कम करने की पहल नहीं है, बल्कि ये स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज हमने परियोजना प्रस्तुति में बात की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की।
2: 107 एफएम रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
3: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का 107 एफएम रेनबो पर। तीन का तड़का 107 FM Rainbow Pad।
1: कार्यक्रम तीन का तड़का, इसकी शुरुआत करने से पहले बता दे, मौसम विभाग से नदियां मुर्शिदाबाद, पूर्वी वर्धमान, पश्चिमी वर्धमान, बांकुरा, पुरुलिया, पश्चिमी मिदनापुर और झारग्राम के लिए एक मौसम की चेतावनी आप सभी के लिए। दोस्तों, आज दोपहर 2:20 से अगले 2-3 घंटों के दौरान नदियां मुर्शिदाबाद, पूर्वी वर्धमान, पश्चिमी वर्धमान, बांकुरा, पुरुलिया, पश्चिमी मिदनापुर और झाड़ग्राम जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की बहुत संभावना है। ये चेतावनी मौसम विभाग से प्रदान की गई है और चेतावनी यहीं समाप्त हुई। कार्यक्रम तीन का तड़का में आप सुन रहे हैं अपनी आरजे भारती के संग और रहेंगे शाम के 4 बजे तक। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जगजीत सिंह के इस ब्यूटीफुल ट्रैक के संग। जॉगर्स पार्क से इस गीत को सुनिए आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर।

जी हाँ, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। जिन्होंने बहुत दिनों बाद इस गीत को सुना, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो आप खो गए होंगे उस समा में जहाँ पर ये गीत फिल्माया गया था, जहाँ पर स्टेज पर गाया जा रहा था और विक्टर बैनर्जी देख रहे थे ऑडियंस में। और क्या कहूँ, ये गीत आज भी वो जॉगर्स पार्क की वो मेमोरीज साथ लाता है। और कुछ ऐसी तो होती हैं हिंदी फिल्में, और इसीलिए हर शुक्रवार को बड़े पर्दे पर रिलीज होती है और हमें बेइंतहा इंतज़ार रहता है कि भाई क्या रहा, किस फिल्म का हाल। क्योंकि जो हिंदी फिल्मी और हिंदी फिल्मी के दीवाने हैं, हिंदी फिल्मों के दीवाने हैं और बड़े पर्दे पर जाकर देखना पसंद करते हैं और अपनी एक खास राय रखते हैं, उनके लिए तो बस हर शुक्रवार एक ऐसा दिन होता है जहां पर वो शायद से कई फिल्मों के लिए बेकरार रहते हैं। और हम हर शनिवार को और हर दिन तीन का तड़का में कुछ ऐसी ही बॉलीवुड न्यूज़ लेटेस्ट रिलीज को ऐड करते हैं जहाँ आपको हम बता देते हैं कि वीकेंड पर इतना भी हो एग्जाम्स का टेंशन, लेकिन थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट तो चलता रहना चाहिए। दोस्तों, लास्ट डे यानी कि कल रिलीज हुई है हैवान, जिसके स्टारकास्ट में है अक्षय कुमार और सैफ अली खान जी। एक क्राइम थ्रिलर है ये फिल्म, प्रियदर्शन के निर्देशन में, और रिलीज हुई है कल। शुरुआती बॉक्स ऑफिस जो रिपोर्ट या प्रतिक्रिया मिली है, जो काफी धीमा शो करती है। भाई अभी तो ये ट्रेंड बन गया है कि एक हफ्ता जो है वो थोड़ा सा धीमा रहता है, लेकिन उसके बाद फिल्म शुरू करती है। कुछ ऐसा ही हुआ मैं वापस आऊँगा के साथ और अभी हनुमान अंश के साथ भी। हनुमान अंश का क्या है हाल फिल्म का, सभी जानते हैं कि ये फिल्म कितनी वाहवाही लूट रही है और कितनों को इंस्पायर कर रही है ये फिल्म, जानेंगे इस फिल्म के बारे में। लेकिन उससे पहले ये गीत फिल्म ये दिल लगी से लता मंगेशकर, अभिजीत और उदित नारायण की आवाज़ में।

न समझो इसे दिल लगी, भाई हमने समझा नहीं, आपने ही अपने मुंह से बोला कि यही है दिल लगी। ये दिल लगी फिल्म से आप सुन रहे थे इस वक्त इस ट्रैक को, और हम बात कर रहे थे आपसे कि किस तरह से हैवान की रिलीज थोड़ी सी धीमी रही है, लेकिन होपफुल हैं हम लोग आने वाले हफ्तों में शायद से ये फिल्म अपनी पकड़ जमाए और भी बरकरार रखे और भी बढ़ाए भी। कुछ ऐसे ही पेश आ रही है फिल्म में हनुमान अंश, जो जबरदस्त सफलता अपनी जारी रखी है। 36वें दिन तक फिल्म की भारत में ग्रॉस कमाई लगभग 205 करोड़ बताई जा रही है, और कुछ ऐसे ही टक्कर दे रही है फिल्म को मिर्जापुर द मूवी की। भाई आजकल तो कुछ भी देखो तो इस फिल्म से रील्स तो आने बनते ही हैं, तो बस देखते रहिए आप। ये दोनों फिल्म इस वक्त फिल्मी पर्दे पर बहुत ही कमाल कर रही है, और हम यहाँ पर आपके साथ हैं एकदम म्यूजिकली योर्स प्योर म्यूजिक लेकर, एफएम रेनबो पर कार्यक्रम 3 का तड़का लेकर। मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती, और इस वक्त नीरज श्रीधर और सुजैन द्वेल की आवाज में प्रेम की नैया, ये गीत अजय प्रेम की गजब कहानी से।

किचन हाउस के द लेज को रिलीज किए थे और निखिल आडवाणी जो डायरेक्टर थे इतनी बड़ी स्टार कास्ट को लेकर आए थे इस फिल्म में, अभी वो बोल रहे हैं कि भाई फिल्में जो है वो स्टार्स के कारण हिट नहीं करती है और दर्शक इतने बड़े बड़े स्टार्स को देखकर भी बड़े पर्दे पर नहीं आते हैं फिल्म देखने, वो आते हैं फिल्म की कहानी से जो भी उन्होंने कहा कहानी से फ़ायदा पाकर, कहानी से रिलेट करके, और फिल्म की कहानी स्क्रिप्ट उम्दा होनी चाहिए तभी दर्शक फिल्म देखने आते हैं। तो भाई उनको ये सलामे इश्क के वक्त भी याद रखना चाहिए था। वैसे तो इस फिल्म के गीत जो है सुपरहिट थे लेकिन उस वक्त जितनी शोरगुल करके ये फिल्म आई थी वैसा बॉक्स ऑफिस पर इसने प्रदर्शन नहीं दिखाया था। भाई सलामे इश्क का अभी रिव्यू देकर क्या करेंगे हम लोग, भाई निखिल गुप्ता की, निखिल आडवाणी की बात हो रही थी इसलिए मैंने ये कहा। गुप्ता जी की जब बात आ ही रही है तो यहाँ पर गुप्ताइन जी की बात करेंगे हम। नीना गुप्ता का बेबाक अंदाज तो हम सभी को पता है और वो आज भी कितनी बेबाकी से अपने जो भी सवाल पूछे जाए उसका जवाब देती है और हर चीज़ के लिए एकदम बेबाक तैयार रहती है। और कुछ ऐसा ही उन्होंने किया जब अपनी आगामी सीरीज़ चुंबक के प्रमोशन के दौरान उनसे कुछ पर्सनल लाइफ, शादी और वगैरह वगैरह से जुड़े सवाल पूछे गए तो उन्होंने भी उसका एकदम बेबाक जवाब दिया। जिसके लिए फेमस है वो वैसा ही किया उन्होंने। और हम फेमस है आपके लिए बेहतरीन म्यूजिक पेश करने के लिए जिसे आप सुन रहे हैं इस वक्त आकाशवाणी कोलकाता के 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक में कार्यक्रम 3 का तड़का में अपनी आरजे भारती के संग रहूंगी मैं शाम के 4 बजे तक। सुनते रहिए, साथ रहिए।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

अब दो खबरें हैं यहाँ पर मेरे पास हिंदी फिल्मों यानी बॉलीवुड से जुड़ी, एक में थोड़ा सा नाराज वाला खबर और दूसरे में चोरी की खबर। भाई दोनों ही किसी के साथ बुरा तो हुआ ही है, वो बुरा होने वाले कौन है भाई? संगीतकार अमाल मलिक ने सोशल मीडिया पर सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस यानी SKF के सोशल मीडिया पेज मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी नाराज़गी दिखाई है और अपना गुस्सा जाहिर किया है। ये तो नाराज़गी वाली बात गई। अब चोरी वाली बात ये थी कि अभिनेत्री अमीषा पटेल की मां के घर से लाखों के हीरे के कंगन चोरी होने की खबर आई है, जिसके संबंध में घरेलू सहायिका के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है। भाई हम चाहते हैं ये नाराज़गी जो है वो जल्दी दूर हो जाए और चोरी का सामान जल्दी मिल जाए। और क्या चाहेंगे, बाकी सब तो कुछ ऐसा है जो इस वक्त अरिजीत सिंह और नीति मोहन साथ में गा रहे हैं।

दोस्तों, अब एक विशेष जानकारी। 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत की ओर से मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 28 अक्टूबर को अपराह्न 12:30 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम

बंगाल सर्कल, योगा योग भवन, P36 CR एवेन्यू, कोलकाता 700012 में गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास, सहायक निदेशक, डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्कल, P36 CR एवेन्यू, कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050 या 0332212062 या 0332212050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। उपयुक्त डाक एवं विश्व पेंशन अदालत में उत्तराधिकारी आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना यहीं समाप्त हुई।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

दोस्तों, इसी गीत के साथ एक और गीत आपको सुनाऊंगी और कहूंगी आपसे भाई आज का तीन का तड़का यहीं पर समाप्त तो होता है। फिर मिलेंगे आपके संग किसी और तीन का तड़का में और मैं आपके साथ मिलूंगी बस कुछ मिनटों बाद ही एफएम गोल पर चयन क्लासिक्स में। जाते जाते आप सभी के लिए सोच रहे हैं थोड़ा सा बैनी दयाल और नीति मोहन को बोलते हैं कि बैंग बैंग करे, बैंग बैंग फिल्म से ये गीत आप सभी की सेवा में हाजिर है और मैं आपकी सेवा में और आपके लिए हाजिर रहूंगी एफएम गोल्ड पर कार्यक्रम चयन क्लासेस के साथ। सुनते रहिए, साथ रहिए आकाशवाणी कोलकाता।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक जाने अनजाने।
1: सात बजकर 4 मिनट और 12 सेकंड। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी कोलकाता 107 FM रेनबो दिल से दिल तक में। मैं हूं आपके संग आपकी आरजे भारती और हर शनिवार की तरह छायालोक में आपके लिए हाजिर है जाने अनजाने। आज जाने अनजाने में हम आपके सामने पेश करेंगे शाम 8 बजे तक कुछ दिल तोड़ने वाला गीत, नहीं जिसे सुनकर आपका दिल नहीं टूटेगा लेकिन टूटे हुए दिल को आराम जरूर मिलेगा। जी, आज आपके लिए कुछ पेश है हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स जो हमारे दिल को बहुत खास है। खासकर इस मौसम में अगर कुछ टूटे दिल को हम लोग राहत दे पाए तो ज़रूर इन गीतों के माध्यम से देंगे। और दोस्तों, कार्यक्रम में आज पहला गीत है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, अकेले हम अकेले तुमसे दिल मेरा चुराया क्यों। जानेंगे इस गीत के बारे में कुछ और बातें, लेकिन पहले सुनेंगे ये गीत आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर।

वैसे तो दिल के टूटने की कहानी और गीतों की जुबानी हिंदी फिल्मों में ढेर सारी है, लेकिन कुछ कुछ खास ऐसे हार्ट ब्रेक वाले सॉन्ग होते हैं जो हम लोग वाकई में एक ऐसे वक्त पर गुनगुनाना पसंद करते हैं जब हम खुद चाहकर ही उस फीलिंग में घुसना चाहते हैं, यानी कि हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग में। कुछ इस गीत को सुनकर ऐसा ही लगता है। अकेले हम अकेले तुम इस फिल्म का नाम है, 1995 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, और गायक थे इस गीत के कुमार सानू और अनु मलिक, संगीत भी अनु मलिक का था और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी। दोस्तों, आमिर खान और मनीषा कोयराला पर फिल्माया गया था ये गीत, जहां कुमार सानू की दर्द भरी आवाज़ और अनु मलिक की धुन और मजरू सुल्तानपुरी के शब्दों ने एक अलग ही जादू बिखेरा था। जी हाँ, इस फिल्म के साथ कंपैरिजन, मतलब इस गीत के साथ कंपैरिजन भी हुई थी, जिससे कंपेयर किया गया था जॉर्ज माइकल के गीत लास्ट क्रिसमस के ट्रैक के संग। वेल, इंस्पिरेशन हो या फिर कॉपी हो, गीत बहुत ही प्यारा था और उम्दा था। आगे बढ़ेंगे एक और गीत की ओर। सच कह रहा है दीवाना, रहना है तेरे दिल में का ये ट्रैक केके की आवाज़ में आज भी उतना ही दिल को छूता है। दिल ना किसी से लगाना, समीर के बोल, हारिस जयराज का संगीत। आप है इस वक्त FM रेनबो पर कार्यक्रम जाने अनजाने में अपनी दोस्त भारती के संग, और आज की शाम हम पेश कर रहे हैं हिंदी फिल्मों से कुछ ऐसे गीत जो कि थोड़े से इमोशनल, हार्ट ब्रेकिंग या फिर दिल टूटने पर गाए जाने वाले गीत। आप भी हमारे साथ शामिल रहिए, 8 बजे तक आप सुनेंगे इसी विषय पर कुछ गीत, और ठीक 8:02 पर आपके संग रहेंगे कार्यक्रम में आगे अमरनाथ। सुनते रहिए, साथ रहिए अपनी आरजे भारती के संग इस वक्त FM रेनबो पर ब्यूटीफुल तराने।

वीकेंड पर मेरा कोई इरादा नहीं है आपको फिर से दुखी करने का, लेकिन ये गाने सुनकर दुखी तो नहीं हम लोग ज़रूर कुछ गुनगुना लेते हैं और याद करते हैं कुछ ऐसे ही ख़ास लम्हों को जो हम बिता कर आए हैं इन गीतों के साथ, वो मेमोरीज रह जाती है हमारी। दोस्तों कुछ ऐसा ही है अगला गीत, हम दिल दे चुके सनम से, के और डोमिनिक की आवाज़ में, संगीतकार इस्माइल दरबार, गीतकार महबूब। आप समझ ही गए होंगे किस फिल्म की, और किस फिल्म की तो मैंने नाम बोल ही दिया, कौन से गीत की बात कर रही हूँ। जी हाँ, तड़प तड़प के इस दिल से, एक तो केके की एक दर्द भरी आवाज़ और वाकई में

गीत में समीर और नंदिनी के रिश्ते में जो उस वक्त परेशानियां और जुदाई का दर्द जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली इस गीत में पेश किया गया था उसी दर्द के साथ। दोस्तों इस वक्त के डोमिनिक और संग है सहगायक हम दिल दे चुके सनम का ये ट्रैक तड़प तड़प के इस दिल से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक जाने अनजाने अपनी आरजे भारती के संग और मैं रहूंगी आपके साथ शाम के 8 बजे तक इस कार्यक्रम में। उसके बाद आप आगे सुनेंगे इस कार्यक्रम को अमरनाथ के संग रात की 9 बजे तक। सुनते रहिए, साथ रहिए।

0: 7:25 और इस वक्त दार्जिलिंग के लिए मौसम संबंधी चेतावनी दी गई है मौसम विभाग से। हल्की से मध्यम गरज और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज शाम 7:10 से अगले 2-3 घंटों के दौरान दार्जिलिंग जिले के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, ये चेतावनी और सूचना यहीं समाप्त हुई। आप है इस वक्त आकाशवाणी कोलकाता 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम छायालोक जाने अनजाने में।
1: जाने अनजाने

दोस्तों, कार्यक्रम में अगला गीत तो हम शामिल करेंगे ऐ दिल है मुश्किल का टाइटल ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज़ में। इस गीत की खास बात ये बनी कि इसमें एक ऐसे पक्ष को दिखाया गया जो किसी से बेहद प्यार करता है, लेकिन उसे वो प्यार वापस नहीं मिलता है। वो जानता है कि रिश्ता पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उसके दिल में उस इंसान के लिए प्यार ख़त्म ही नहीं होता। उस प्यार की कहानी है ये गीत, जो मिल नहीं पाया लेकिन दिल से कभी गया भी नहीं। और यही कहानी थी ऐ दिल है मुश्किल की।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: जाने अनजाने।
2: कार्यक्रम छायालोक और जाने अनजाने सैटरडे स्पेशल में मैं हूँ आपके संग, आपकी आज भारती। और आज कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं कुछ दिल टूट जाने वाले लम्हों के आधार पर जो गीत बने हैं हमारे, जिन्हें हम कई वक्त कहते हैं सैड सॉन्ग्स। मैं कहती हूँ कि इनको सैड सॉन्ग ना बोलकर बस हार्ट टचिंग सॉन्ग्स बोलेंगे कुछ कुछ मोमेंट्स के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, कार्यक्रम में हमने शामिल किए हैं उन गीतों को, और अभी अभी आपने सुना ऋचा शर्मा की आवाज़ में मुसाफिर फिल्म का ये गीत। और कैसे हम बोल सकते हैं दिल चाहता है का वो गीत जो आमिर खान पर फिल्माया गया था, और वो उस गीत के माध्यम से बताया गया था कि आमिर खान उस फिल्म में जहाँ पर एकदम से फ्रीकी टाइप का उनका कैरेक्टर था, लेकिन वो कितने सेंसिटिव थे व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ हार्ट। तन्हाई, ये गीत सोनू निगम की आवाज़ में।

सौ दर्द की एक दवा और हम हैं आपके साथ उस दवा के रूप में आपके लिए बेहतरीन म्यूजिक लेकर। दोस्तों अपनी दोस्त आरजे भारती को दीजिए यहीं पे आज के लिए इजाजत। ठीक 8:02 पर आपके संग रहेंगे अमरनाथ लेकर कार्यक्रम को आगे। कार्यक्रम छायालोक जाने अनजाने सुनते रहिए, साथ रहिए। मुलाकात होगी आपसे मेरी अगले शनिवार को। जाते जाते के की आवाज में द ट्रेन फिल्म का ये ट्रैक।

तुझे याद न मेरी आई किसी से, अब क्या कहना भाई, किसी की याद आए या ना आए ये तो पूरी तरह से 100% अपने अपने ऊपर है। अगर नहीं आए तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आए भी तो आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही बात है। फिलहाल इस गीत को आपने सुना, कुछ कुछ होता है से, उदित नारायण, अलका याग्निक और मनप्रीत अख्तर की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था संगीतकार जोड़ी जतिन भाई और ललित भाई ने, यानी कि जतिन ललित ने। अगले गीत को है आपके सुनने का इंतज़ार, तुमसे मिलने की तमन्ना है।

एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में आपने सुना फिल्म साजन के इस गीत को। जी हाँ, और साजन 90s की एक सुपरहिट फिल्म रही, सुनने वालों, एक म्यूजिकल हिट भी कहा जा सकता है। और उस वक्त तो टीवी का इतना ज़्यादा प्रचार नहीं था, इतना ज़्यादा टीवी नहीं थे, हाँ, और मोबाइल भी नहीं था कि हम देख लेंगे, जब मर्जी हुआ देख लिए। तो हॉल में जो है ना, मुझे याद है हॉल में पूरा जो है बुकिंग फुल रहता था, हाउसफुल कहा जाता है, हाउसफुल, हाँ, तो हाउसफुल रहता था। और जो भी फिल्म देख के निकलते थे, जो टीनेजर्स लड़के लड़कियां, तो लड़के समझते थे खुद को सलमान खान या फिर संजय दत्त, संजय उनके स्पेशल बालों के कारण संजय दत्त उस वक्त काफ़ी ये चला था। और जो मोहतरमाएँ हैं, लड़कियां हैं, वो खुद को माधुरी दीक्षित से कम तो बिल्कुल नहीं समझती थी। और एक बहुत ही रोमांटिक फिल्म था, और बहुत ही इसमें थोड़ा वो दर्द भी था, और सब कुछ मिक्स करके साजन एक बहुत अच्छी और एक हिट फिल्म रही।

कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में फिल्म सपने साजन के किस गीत को अभी भी आपने सुना। और अब मौसम की जानकारी थोड़ा साझा कर लूँ आपके साथ। लाइट टू मॉडरेट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग अकॉम्पेनिड विथ लाइट टू मॉडरेट रेन एंड गस्टी विंड विथ स्पीड 30-40 किलोमीटर पर आवर, वेरी लाइकली टू इफेक्ट ओवर सम पार्ट ऑफ मुर्शिदाबाद नदिया डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग नेक्स्ट 2-3 आवर्स फ्रॉम 1939 ऑन 12/9/2026। जी हाँ, मुर्शिदाबाद नदिया डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं बारिश के साथ थोड़ा तूफान, थोड़ी आंधी भी चलने की उम्मीद है, जिसकी स्पीड, जिसका जो धारा है वो 30 से 40 किलोमीटर पर आवर रहने की उम्मीद है, इसलिए सावधानी बरतें।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं अपने रेडियो वाला दोस्त अमर के साथ शायद लोग जाने अनजाने के दूसरे भाग में।
1: जाने अनजाने

1992 में रिलीज हुई फिल्म दीवाना में हमने देखा था खूबसूरत अदाकारा दिव्या भारती को, जी हाँ, और उसके साथ थे ऋषि कपूर, और बहुत ही एक म्यूजिकल हिट फिल्म थी ये दीवाना। समीर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण की जोड़ी ने।

कुमार सानू, अलका याग्निक आवाज में अभी भी आपने सुना फिल्म सलामी के इस गीत को। समीर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण की जोड़ी ने। जी हाँ, कमाल है ना, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती है, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। बिल्कुल, एक दिन हमारी आंखों ने भी थक कर हमसे कह दिया, ख्वाब वो देखा करो जो पूरा हो, रोज रोज हमसे रोया नहीं जाता। जी हाँ, एक दिन हमारी आंखों ने भी थक कर हमसे कह दिया, ख्वाब वो देखा करो जो पूरा हो, रोज रोज हमसे रोया नहीं जाता।

मोमबत्ती को भी आखिर में जाकर पता लगा कि उसे उसी धागे ने तबाह किया है जिसे वो सीने में छुपा कर रखती थी। दिवाली तुम भी मनाते हो, दिवाली हम भी मनाते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम दिए जलाते हैं और तुम दिल जलाते हो। सन 1993 में रिलीज हुई फिल्म रंग के इस गीत को अभी आपने सुना, लका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। समीर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण की जोड़ी ने। जी हाँ दोस्तों, और वक्त बिल्कुल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और मैं तो अब आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि खुश रहिए, मस्त रहिए, परिवार के साथ बिताइए और दुआओं में उठे अगर हाथ तो एक छोटी सी दुआ मेरे लिए भी मांग लीजिए। जाते जाते टाटा बाय बाय करता हूँ और उम्मीद है कि कल संडे आप एंजॉय करेंगे। आपके साथ था अब तक 17 AIR FM रेनबो पर, मैं आपका रेडियो वाला दोस्त, मैं अमर।